हैप्पी संडे क्राइस्टचर्च, कैसे हैं आप सभी का हम स्वागत करना चाहते हैं रेडियो केजे के साथ आप जुड़ चुके हैं। और जी हाँ बिल्कुल, एक और संडे, एक और शो जहां पर काफी सारे म्यूजिक, इसके साथ साथ काफी सारे इन्फॉर्मेशन, और अगर आपको भी कोई गीत सुनना है तो हम जरूर आज प्रोग्राम में चलते चलते बजाते चलेंगे। याद रखिए संडे का हमारा जो शो है ये हम ज्यादा करके रामायण पे फोकस करते हैं जो हम आप तक लेकर आ रहे हैं 19th of September। जी हाँ बिल्कुल, 19th of September को ये लेकर आ रहे हैं। कश्मीर हाई स्कूल से ये हो रहा है, इसके लिए टिकट्स, जी हाँ इट्स लाइव नाउ, सो गो गेट योर टिकट्स। आप अपना टिकट्स जो है ये ले सकते हैं, और टिकट्स के लिए आप इवेंट फाइंडर पे अगर रामायण अ टेल ऑफ टू किंग्स सर्च करेंगे, याद रखिए रामायण अ टेल ऑफ टू किंग्स, इवेंट फाइंडर गूगल पे जाइए, इवेंट फाइंडर टाइप कीजिए एंड देन यू विल फाइंड द रेस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन देयर। सो गेट योर टिकट्स जितना जल्द हो सके, डू नॉट वांट टू मिस ऑन दिस लवली अपॉर्चुनिटी जहां पर हमारे साथ स्टेज पर परफॉर्मेंस होंगे, डांसर्स होंगे, एक्टर्स होंगे और रामायण रूबरू आप देखने वाले हैं। आज कार्यक्रम की ओर हम देखें तो जी हाँ बिल्कुल, स्पॉन्सर्स को हम याद करेंगे। स्पॉन्सर्स के साथ साथ आज कहीं जाइए मत, हमारे पास वेल आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए दो चीज़ें हैं। एक तो हम आप लोगों को रामायण के बारे में कहानी सुना दे चलेंगे, जी हाँ भगवान शिव और माता सती की जो कहानी है ये आज हम आपको प्रोग्राम के दौरान सुनाएंगे। और एज ऑलवेज अभी हमने जो एक नया सेगमेंट शुरू किया है केजेस हाउस ऑफ हॉरर, जी हाँ बिल्कुल, राइट टूवर्ड्स द एंड ऑफ द शो अराउंड 6:50 हम आपको एक हॉरर स्टोरी भी सुनाते चलेंगे। तो बिल्कुल कहीं जाइए मत, चलिए साथ में मिलकर जो म्यूजिक है इसका आनंद उठाते हैं। इसके साथ साथ हमारा साथ दीजिए, अगर आप फ्री बैठे हैं तो डेफिनेटली कम ज्वाइन अस। सुमिता पीएस जी आप हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं, आपका हम स्वागत करना चाहते हैं। हमारा जो रामायण का शो है जो हम लेकर आ रहे हैं 19th of September को, इसको हम लेकर आ रहे हैं थ्रू द काइंड हेल्प एंड थ्रू द काइंड सपोर्ट ऑफ रॉबिन फ्रॉम NZ मोबाइल मॉर्गेजेस एंड इंश्योरेंसेस। फिलहाल के लिए रॉबिन जी और इनके जो एंटायर टीम है RGGB ये सभी बिजी हैं उधर ओकलैंड में, जहाँ पर जी हाँ याद रखिए अभी एट द मोमेंट चित्रा जी का जो शो है ये चल रहा है। तो अगर आप ओकलैंड में हैं या इफ़ यू आर एट द शो, शायद बाद में आप ये प्रोग्राम देखेंगे, आई एम प्रीटी श्योर यू विल बी हैविंग अ ग्रेट टाइम। और इसके साथ साथ हम हमारे जो सिल्वर स्पॉन्सर्स हैं इनको याद कर लेते हैं, माया फूड्स और RK बेंच टॉप्स। माया फूड्स से कल हमने एक

जी हाँ बिल्कुल, किसी ने क्या खूब कहा है कि चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, क्योंकि चेहरे से आप किसी को जज नहीं कर सकते हैं। और चेहरे का क्या है भाई, चेहरे तो कभी भी बदल जाता है, पर दिल जो है, दिल बच्चा रहता है और बुढ़ापा में भी दिल बच्चा रहता है। आपका चेहरा बुढ़ापा में आ जाएगा पर दिल हमेशा बच्चा रहेगा। और यस बिल्कुल, चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। हमारे साथ कुछ लोग हमारे साथ उधर फेसबुक लाइव से भी जुड़ रहे हैं, तो हम इन सभी का स्वागत करना चाहते हैं। Only going for lunch, dinner, Axel. Oh, thank you so much. Edward Chan जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीताराम भाई जी गो से हमारे साथ शामिल है। एडवर्ड जी है, इनकी बिटिया रानी वेरी वेरी सुपर टैलेंटेड, फियोना जी है और इनके बाकी भी जो फैमिलीज है, और मिसेज एडवर्ड जी ये भी हमारे साथ हमेशा शामिल हो जाती है। और आपकी तरफ से इन्विटेशन आया था पर अनफॉर्चुनेटली उस वीकेंड हम बिजी है, तो हमारी तरफ से आवर एंटायर रेडियो KG टीम की तरफ से आपको, आपके सन को, आपके ग्रैंड सन को बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। वी आर इन लंबा सा, सी आई थॉट सो कि यू आर नॉट इन न्यूजीलैंड यार, इट्स गुड। आई थिंक ये जिंदगी में ये बहुत ज़रूरी है कि हमें घूमना चाहिए जब भी हमें मौका मिले, क्योंकि जिंदगी जो है ना बहुत छोटी होती है। कब कुछ नहीं बनता, कब जिंदगी आकर और कब जिंदगी फिनिश हो जाए हमें पता ही नहीं चलेगा। तो जिंदगी में जब भी आपको मौका मिले बिल्कुल आप जितना ज्यादा हो सके घूमिए और मेक द मोस्ट ऑफ इट। हाँ पूछो, कौन सी मंता वदा बंगो, लाइक वी से इट इन फिजी, वदा बंगो, व्हाट डू यू वांट। ओके चलो, इस बार काफ़ी दिनों बाद हम ये गीत सुनने जा रहे हैं और साधा आंटी प्लस, साधा आंटी प्लीज, आई एम ट्राइंग टू बी सीरियस यार, साधा आंटी कम ऑन। चलो चलो, ये कॉन्डेंस मिल के बारे में हम बाद में बात करेंगे। आई थिंक हमारे ये हमारे हम मैंने एक नोटिस किया कि हमारे जो फिजी के लोग हैं ना, चाहे फिर वो फिजी के किसी भी कोने से हो, ये फनी बहुत होते हैं, बहुत बड़े यू नो मस्त जोक मारते हैं, बड़े मजाक के हो। चले इस गीत में हम सभी को याद कर लेते हैं काफ़ी दिनों बाद फिल्मी पर्दे पर सुनील शेट्टी और करिश्मा कपूर के लिए, फिल्म हमारे नाम पे ही कृष्णा। जी हाँ, यू लिस्निंग टू रेडियो KG लोकल ओनली ऑन प्लेन्स 89.3।

जी हाँ बिल्कुल, इस दिल से तो तूफान गुजरते हैं, तुम बिन न जीते न मरते हैं, तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, क्या बात है। जी हाँ, किसी को मिस करना बहुत ही अच्छी बात होती है, पर कभी कभी क्या होता है ना कि हम इतना ज़्यादा मिस करने लगते हैं ना कि हम अपना खुद का जीना भूल जाते हैं। भाई कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, जीना बंद मत करना, जीना और खाना बंद मत करना है, क्योंकि ये दोनों के कारण ही इंसान का जन्म होता है। माता पिता का प्यार, माता पिता को देख लीजिए, भगवान को हाथ जोड़कर नमन कर लीजिए, समय पे खाना खा लीजिए। यस, किसी को मिस करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आई मिस माई अप्पा ऑल द टाइम, आई थिंक अप्पा एक ऐसे इंसान है जिनको हम जिंदगी भर मिस करेंगे, पर मुझे ये भी पता है कि जहाँ पर भी है खुश है, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। रवीन कुमार जी, मामा मामा सुमित और कुंजी कुंजी बात करें, मामा आपके सिस्टर को तो रह सकते हैं आप समझा दे आगे। और संजय रीना जी आप भी हमारे साथ हैं। जी हाँ, थैंक यू सो मच आपके लवली कमेंट के लिए। मामा रवीन, मामा आप सकते हैं तो नए लोग से बात करें, यहाँ पे एक लेडी है, शायद आप जानते हैं, साधना आंटी है और आपके बहुरानी है सोनिया शर्मा है और आपके लड़का है सुमित, लोग बहुत भारी अनबन बात करें यहाँ पे आके शो में यार। ऐसे नहीं तो हम फिर नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट डे लोग क्यों नहीं करेगा। चलो हम गीतों की आज बारिश कर रहे हैं और ये गीत आप जो सुन रहे थे तुम भी निंजिया जाए कैसे, कुछ अलग कुछ नए नगमे लेकर आ रहे हैं और बहुत अच्छा विकी, लाइक यू मिस इंडियन। ए मिलो, नो जॉइन टू लाइफ ऑप्शन। ओ जीबी जी, होगा जीबी जी, आपको शायद अपने पेज पे जाना पड़ेगा जीबी, यू हैव टू गो टू योर पेज ऑन जीबी आइजेक, वहां से रेडियो कैजे का लाइव देखना पड़ेगा आपको। So, तब आएगा, क्योंकि अभी एट द मोमेंट आई थिंक आप रेडियो कहजे के लाइव पे हो, मे बी दैट्स व्हाई यू कैन नॉट सी, पर अगर आप जीबी आइजेक के पेज पर से जाकर रेडियो कहजे का लाइव उठाएंगे और उस लाइव पे आकर देखेंगे तो शायद आ जाएंगे। सुमित, हे सुमित ब्रो, व्हाट्स हैपनिंग, मेरे कजन सारे उधर देख रहे हैं, कुछ लोग ओकलैंड से सुन रहे हैं, कुछ लोग फिजी से सुन रहे हैं, कुछ लोग ब्रिस्बन से सुन रहे हैं और कुछ लोग हमारे इधर क्राइस्टचर्च से ही सुन रहे हैं। चलो बहुत दिनों के बाद अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में ये जो तेरी पायलों की छन छन है, आशिकों के दिल का ये धड़कन है। जी हां, यू आर लिस्निंग टू रेडियो केजे लोकल ओनली ऑन, सब साथ में प्लेन्स मीडिया।

जय बिल्कुल चना वे घर आ जावे बुलावे घर आ जावे. थैंक यू सो मच जितने लोग हमारे साथ उधर फेसबुक माध्यम से जुड़े थे. विकेन्ना थैंक यू सो मच ब्रो, ऑलवेज फन टू हैव यू गाइस. एंड मेलो थैंक यू सो मच ब्रो. और हमारे काका जी मुन्ना काका हमारे साथ उधर नॉर्थ शोर से जुड़े हुए हैं. काका जी कैसे हैं, आपका भी हम स्वागत करना चाहते हैं. तो जी बिल्कुल, हम आज हमारे प्रोग्राम की ओर देखते हैं तो काफ़ी अच्छा जा रहा है और जीबी जी का इंतजार है. जीबी जी उधर ओकलैंड में फिलहाल के लिए चित्रा जी का जो शो है उस शो में वहाँ पर बिजी है, पर वी आर होपिंग एंड यू नो विशिंग कि वो भी हमारे साथ आ जाए एंड देन वी कैन एक्चुअली जीबी जी के साथ मिलकर वी कैन टॉक सम मोर नाइस प्लेलिस्ट. ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. जी हाँ ओके चलो, जबकि रामायण है और पिछले वीक जीबी जी ने हमें एक फीडबैक दिया कि यस आप जो होरा स्टोरी लेकर आ रहे हैं दिस इज वेरी ऑसम, जो प्रोग्राम के एंड में हम सुनेंगे, पर चलो हमारे पास समय है, थोड़ा सा भगवान का नाम भी ले लें.

जी हाँ बिल्कुल, वादा रहा सनम होंगे जुदा ना हम, चाहे ना चाहे जमाना। ये गीत आप सुन रहे हैं और सुन रहे हैं एक्चुअली हमारे फ्रिक्वेंसी के माध्यम से भी प्लेन्स मीडिया। और ये अगर आप फ्रिक्वेंसी पर डायरेक्ट सुनना चाहते हैं FM 96.9। और शायद जो लोग फ्रिक्वेंसी पे आप लोगों ने मिस कर दिया, पर उधर हम हमारे जो फेसबुक लाइव में हम जीबीजी आरजे जीबी जो अभी ऑकलैंड में चित्रा जी का जो शो है ये होस्ट कर रही है, हम उनसे बात कर रहे थे। वी ऑल्सो गॉट अ ग्लिम्स ऑफ चित्रा जी को जो लाइव शो हो रहा है ये भी हमें देखने को मिला। सो थैंक यू आरजे जी भी, थैंक यू शालिन जी फॉर हेल्पिंग हर आउट, क्योंकि आई थिंक उनके जो फेसबुक था थ्रू हो नहीं रहा था। और कुछ लोग हमारे साथ हमारे फेसबुक पे अभी भी जुड़े हैं, और जो लोग हमारे साथ फ्रिक्वेंसी पे थे आप लोगों को वो हम आप लोगों को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। चलो हमारा संडेस का जो हम एक रिचुअल चलाते हैं जहाँ पर हम आप लोगों के लिए होरा स्टोरी लेकर आते हैं, आप ये होरा जो म्यूजिक है स्टोरी सुनिए जहाँ पर हमारे फेसबुक लाइव पे हम जो होरा स्टोरी बताने वाले हैं।

0: दिस इज गाइस अनदर संडे. थैंक यू सो मच जो लोग हमारे साथ जुड़े थे. आप लोगों का साथ बहुत ही अच्छा लगा. हैव अ ग्रेट रेस्ट ऑफ द संडे. हैव अ ग्रेट ग्रेट वीक. और हम आप लोगों से मिलेंगे कब? आने वाले फ्राइडे को. तब तक के लिए ख्याल रखिए. दिस इज आरजे क्रिश साइनिंग ऑफ फ्रॉम प्लेन्स मीडिया ऑफिस. अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना.
1: मेरी जिक्र का जुबा पे स्वाद रखना.
0: Till we meet again, look after yourself.
1: That's it for this week. This is your host RJ Krish and RJ GB.
0: Keep listening to Radio KJ Local only on Plains FM 96.9. And for more, follow us on Facebook, Radio KJ Local.
1: Also, like and subscribe us on Apple Podcasts to never miss an episode. And find past episodes on plains.org.nz.